0: टीम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारी को लागि
0: टीम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 98 41 96 47 26
0: टीम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: के तपाईँ स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनी को खोजीमा हुनुहुन्छ
0: विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत

0: おい、
1: 哎呀，
2: 这个怎么来着？
0: 存在啊，完了。
3: 你们三个人出来一路往哪去玩去？
0: 嗯，阿肯，
3: 阿肯，
0: 啥的肯呢？
2: 你们去玩的，
3: 你们去玩的。
0: 嗯，是呢。
3: 嗯，
0: 说，哎，咱们没人帮呢。
3: आखिर सारे फिल्मों के वारो
0: तो सही ना क्या अलग किसी फिल्म में क्या डायमी मेलोडीज फिल्म में
3: और फिल्म में कैसे
4: Akin sare kine nu make varo When you're around baby I'm like silaro Akin sare kine nu make varo Nu make varo